0: कुन सुबह से हिस्सा की तंखाई की अकोन में सरुकता मालेम की कंगफाल की सरु चाद कुन मापन की सांग उमंग आक्त ओइके अपुन व उमंग की सरु ख्वाइदी की आमने रेखी बसी लेतिन अमेरिका दने इंडिया की अपुन व लम की सादा तरामापन पोए निफुत रेत की सांग न उमंग ने मसी याम न सांग याम त्रबने मणिपुर की ओइने दी स्टेट असी की अपुन बलम की सरो साध हम फोनी पान की सांगना उमंग ओइरी उमंग सिंगबु एवरग्रीन अमदी देशी देश हाय न खाय दुक पया एवरग्रीन फॉरेस्ट हाय बदी मतम चुप द इसंग संग न लईबा सही अमगी सीजन अमतद पाम्बी उशिंगी मना केंदा बहायसिनी हायरीबो उमंग सिंग असिबु ट्रॉपिकल अमदी मिड लेटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट मेडिटेरेनियन अमदी कॉनिफर्स फॉरेस्ट हाइन खाइदोई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हाइबसी इक्वेटोरियल अमदी ट्रॉपिकल ओइबा इशिंग समुद्र मापाल गिलम सिंगदले नोंकन सुबा अमदी साबगी सांग वांगबना उपांबी सिंग मखल कया हौवी मफम सिंगदु पांबी अमदी उशिंग कुन हौवे सही सुपा पांबी सिंग हौबा उमंगी ओइरबा मवोंगना शंग शंग नले मफम मदुद हौब उ पांबी सिंगि मनासु याम न पाई अमदि लैमाइबु पांबी नापी सिंगबि न थान कुपसिले उमंग मथक अदुसु पांबी मना सिंग न खंजन खिबदगी नुंगसा मंगारना लैमाइ यौब गमदे
1: हमा मसिदि याम फाब प्रोग्राम निना आंगांग सिंग अदु येंजरादि याम फादौनिने स्मोइलु बकादुम चखिब न खंगदिने तौबिसि
0: हाई रिवर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सिंग असिदा अकन्ब उपांबी सिंग महोगोनी टाइरेन पांबी इबोनी शिंसोना रबर रोजवुड न चिंग हौई मसीगुंब उमंग सिंग खा अमेरिका की इमाजोन बेसिन ले मधुत नतन कोंगो बेसिन आफ्रिका की अमदी मलेशिया दसुद ले लैमाइद थान नापी पांबी सिंग हौगना ललोन नबगीदमक उ सिंग यान बहायबसी अराइब थबक नत्ते मिड लेटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट हायबसी काबक काबक साब वार्म टेम्परेचर रीजन सिंगले हायरिब उमंग सिंग असी चाइना की खा थंगब जापान की खा थंगब ब्राजील की खा नोंगपो ऑस्ट्रेलिया की खा नोंगपो अमदी यूएसए की खा नोंगपो सरुकतले कालेन थाद हेन साब अमदी नोंकन न सुबदगी हाइरिब उमंग सिंग असिद ओ खाइबदी उयुंग उशान वॉलनट हेजुगा मलबेरी शेही हाइबने सिंग उशिंग अरंग काइन हवे
2: रिया कैनो नंग येंगी दुबो
1: उमंग मखल कया की मतांग द डॉक्यूमेंट्री एम लाइए सिसुम येंगम बनीदा कानिफरस उमंग सिंग ना अवांग थंगबा पोलर रीजन यूरोप एशिया अमदी नॉर्थ अमेरिका की अवांग चिंजाव कया की मथकत लेरी उमंग सिंग अदुदा हौब उसिंग इसंग संगन उरी मना सुकेंदे उसिंग अदो चुमद्रिंग चुमना इवांग वांग लगा मतोन इतुम तुमि उसिंग अदुगी मनादी येतुम मोंग माले हाइब उसिंग अदुदी उचान फर सेदर अमदी स्प्रूस नि अथोटप उ मखल कयासी चे साबद याम चाने अमदी ललोल इतिक तौबगी याम न पामने
2: मेडिटेरेनियन सिगी अकोइबद लेरी बलम सिंग अमदी लेटिट्यूड की मयाइ थंग सरुक्त लेरी ब कंटिनेंट सिंग दिने कालेन थाद साबा अमदी कंगलबसु निंथम थागी मतमद लुंबु लुंबु साबग लोइना चोट चोट लाउ आइंग असाद सीजन गी ओइना होंगलकपग उ सिंग अदुक चासिन नखी असाब कालेन थागी मतमद अदुम खांग दुन लेदुनने इसंग संगन ले
1: ओ अदु वेरदी उमंग सिंग अदुदा हौब उसिंग मरायाम सांगम गनि अदुगा मयाय ओइर वांगम गनि
2: हाय रिबर उ मखल सिंग अदो फ्रांस इटली स्पेन इजराइल टर्की सेंट्रल चिली ऑस्ट्रेलिया गी खानुंग चुप थंग ब सरुख अमदी कैलिफोर्निया दा हौवे मफम सिंग अदुदा हौब उसिंग दी सोरफोन उयुंग सेदर उशान कोर्फ अमदी सिएस्टनट नि
1: देसी दिउस उमंग सिंग दा हौब उसिंग दी अकक्नबा सिजन अमद मना सिंग केली मधुन मखोई की मसाद अचोट मांगन थम्बसे सोर होंदो ओंजिन तौबदनी
2: ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯀꯪ ꯀꯪꯕ ꯁꯤꯖꯟ ꯂꯩꯕ ꯁꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩ꯫ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯟꯁꯨꯟ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ, ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ, ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜ, ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫
1: ꯑꯣ, ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯕ ꯎꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯡꯅ ꯍꯧꯗꯦ꯫ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯥ ꯀꯦꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯎꯁꯤꯡꯗꯤ ꯆꯤꯡꯁꯨ, ꯁꯥꯜ, ꯁꯦꯟꯗꯜꯋꯨꯗꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯉꯤ꯫
2: ꯃꯤꯗ ꯂꯦꯇꯤꯆꯨꯠ ꯗꯦꯁꯤꯗꯤꯌꯣꯁ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯎꯃꯪ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯑꯏꯪꯕ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯪꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ 6ꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩ꯫ ꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ, ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ, ꯖꯄꯥꯟ, ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ, ꯅ꯭ꯌꯨ ꯖꯦꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯂꯤꯒꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩ꯫ ꯑꯦꯁ ꯕꯤꯔꯠꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯌꯨꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯎꯁꯤꯡꯅꯤ꯫
1: ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ꯫
2: ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯃꯤꯈꯣꯏ ꯃꯣꯅꯤꯁꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯔꯗꯤ ꯀꯌꯥꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯗꯕꯅꯣꯁꯦ?
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯧꯔꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯃꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗꯅ?
2: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯤ ꯚꯤ ꯚꯣꯂꯨꯝꯗꯨ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯈꯠꯂꯛꯎꯁꯦ, ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯈꯤꯁꯤ꯫
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯖꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯏ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯎ, ꯃꯣꯡꯁꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯄꯤꯅ ꯍꯧꯋꯤ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯕ ꯎꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯇꯤꯡꯈꯪ ꯄꯥꯜꯂꯤ꯫ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ, ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯂꯤꯌꯟ, ꯒꯤꯅꯤꯌꯥ, ꯍꯥꯏꯂꯦꯟ ꯈꯥ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯁꯨꯗꯥꯟꯗ ꯂꯩ꯫ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯁꯕꯥꯅꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ꯫ ꯀꯟꯇꯤꯅꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯠ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯠ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯏꯃꯔꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ ꯂ�꯫ ꯑꯋꯥꯡ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯁ, ꯌꯨꯔꯥꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯐꯁ, ꯈꯥ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯄꯝꯄꯥꯁ, ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯁ, ꯈꯥ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯕꯦꯜꯠ ꯒ꯭ꯔꯥꯁꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯇꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥ ꯚꯤꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯛ ꯁꯥꯔꯀꯜꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩ꯫ ꯎꯟꯅ ꯀꯨꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯃꯐꯝꯁ꿤ꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯁꯪ, ꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯍꯧꯋꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯖꯣꯟ 5 ꯂꯩ꯫ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯕꯔꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁ, ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯗꯦꯁꯤꯗꯤꯌꯁ ꯐꯣꯔꯦꯁ, ꯀꯣꯔꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁ, ꯇꯥꯏꯗꯦꯜ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯃꯈꯜ 4 ꯂꯩ꯫ ꯁꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯗꯦꯁꯤꯗꯤꯌꯁ ꯐꯣꯔꯦꯁ, ꯁꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯕꯔꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁ, ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯃꯣꯏꯁ ꯗꯦꯁꯤꯗꯤꯌꯁ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯃꯣꯏꯁ ꯁꯦꯃꯤ ꯑꯦꯕꯔꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯐꯣꯔꯦꯁꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ꯫
2: ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯡꯖꯗ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ꯫ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕ ꯇꯥꯏ꯫ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥꯀꯣꯏꯅꯅ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ, ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ꯫ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕ, ꯁꯥꯁꯟꯒꯤ ꯁꯖꯤꯛ ꯆꯥꯐꯝ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯄꯣꯊꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ꯫ ꯎꯃꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ꯫
1: ꯎꯃꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯎꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯅꯅꯕ ꯁꯤꯡ, ꯎꯍꯩ ꯋꯥꯍꯩ, ꯂꯪ, ꯃꯁꯤꯡ, ꯃꯔꯨ, ꯀꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯕꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯎꯃꯪꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯠ ꯏꯚꯔꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯅꯤꯐꯔꯦꯁ ꯐꯣꯔꯦꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ꯫
2: ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯤꯌꯥ, ꯅꯣꯔꯋꯦ, ꯁ꯭ꯋꯤꯗꯦꯟ, ꯐꯤꯟꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯅꯥꯗꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ, ꯆꯦ, ꯋꯨꯗ ꯐꯜꯐ ꯑꯃꯗꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏ꯫ ꯃꯣꯟꯁꯨꯟ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤꯅ ꯔꯣꯁ ꯋꯨꯗ, ꯁꯦꯟꯗꯜ ꯋꯨꯗ, ꯇꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯍꯣꯒꯦꯅꯤ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯜꯂꯤ꯫
1: ꯎꯃꯪ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ꯫ sendong tanan bahot nabada, maru ebari source asibu, mang takhanba, amadi, sahargi mapam uhen naba umang kothok pagi chang hantan gadabani. Umang nauna sengbat pa, mapam hong hong duna lau singuba, missing yam kalak patapthahanba, aduga, A1SP duna umangi maru ebasing miyam da kangan bana, resource asibu ngak senduna, manghandana thamba mating oigani.
2: Wildlife hairga ikhoina khangnari basi sa usek ngana chingba mahousagi oina leijarakpa mapamda hingba singbudi equatorial amadi tropical gi umang singsida lamlakki sa usek amadi atai organism sing marang kaina le india da makhal kaya kaya gi sa usek sing leiri bani gir umang haina gujarat ta leibashida nongsa sing west bengal gi sundarbans da leiba kai amadi wahong maming sale Manipur de Ladyba, Kabul Lamzao, National Park, Hibasi, Sangai Kauba, Bro, Antler, Deer Gilepamni. A quick layback to Ladyba, National Park Sing, Sanctuary Sing, Amadi, Biosphere Reserve Sing, the Lamlaki Sha, Usik Sing, Buyanganaba, Malayam Gimapam Kayadiki Lam Koibasing Lagna Dibani.
1: Tashing Namak Wildlife Havasi, Tongan Tongan Balebak Kayagi, Mamanjam Labalan Oidi. Masina tourism industry park thok chau thok hanbada mateng pangli adumakpu malem gi mapham kaya da chathari ba miwei bagi thawong singna makhal kaya gi natural habitat singda akai bapi haibadi makhoin hingbada awaba ohel
2: riya madugi mahaina haibadi miwei bagi thawong kaya na maram oiragane malem gi mapham kaya da atang ma makhal gi cha use kaya mutki bathengnari Masina ecosystem da akai bakaya thohalli mausagi khal kai dana thamnana ba lamlaki punsi ngak senduna thambigi tangai phadabalei
1: mara maduna laipa kaya da lamlaki punsi ngak senduna thamna ba national park sing sanctuary sing chemgatuna thamnari sa uchi ching hat pathingna ba ain kaya muk pas tawri
2: mane
1: india da nongsa kai saji amadi wahung sing hat pada athing batham libani
2: Ain kaya siam labasu, ating makayamuk tham labasu, mi kuding maki wakal da lamlaki pun sibu ngak senduna thambagi, yam namak tangai padaba, kangdana lebukum tori. Masi magnani, ating bal laina laina, sendong kara pambagi damak, park, sanctuary sing the lone na hajinduna, sa usik sing hatlambagi pau, equine tatan tari.
1: Mani, Kaziranga National Park da samuganda hatpagi pau. Samu hatuna madugi maya kai maun lalon bakangbu gi pauk ta ba lepti masimak section nothing da baya da bani
2: sume masina lamlak ki punsibu mang ta khan nana ba machak oi ri bani
1: masi thingna ba miyam bu bhap ta han basangi
2: mani mado yam namak tangai phada bani
1: india da nongsa kai saji amadi wahong sing hat pada athing ba thamli bani

0: ꯄ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯒ ꯇꯥꯜꯂ ꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯅꯕ꯭ꯔ ꯌꯥꯅꯗꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯅ
1: हेलो हाय गुड मॉर्निंग
2: गुड मॉर्निंग मैडम संसारको आमुदा काय कुनो हो सर
1: हाय बि थम बियो मिङलाई फम
2: गा हाना तंग था आई आई गिन तम सोम से तल सबम से हम कृपा पान दिन
1: एक्सपर्ट लाई बिरे
2: हम बन के नम बन सारो सोम मैडम के नम खुगिन बाका कोई लो आदा से कोई के सही सही की होय ना मसे हमरा हमगना मगी स्पेसिफिक होय ना कर्म था रे कुमार ना कोई फम्बा कोई ना ना सही पेंडिंग ले वाले तो आमा आमा इंटरनेट तभी तो फ्रेश होय ना कोई ना लो आदाल सीधा कोई ना सही आ गया है तार के दी कोई ना कंप्रेंसिप मागी करो जाए कोई ना डॉक्यूमेंट ना चलना करी करी मागी नकला नहीं जो है वाला रेस्पोंड है ना मुस्लिम देखों ने जी दरकार है उसी दो स्टार्टिंग पे नो जी कर्माय हो गया था क्या आई दिन उस आगे प्री रजिस्ट्रेशन कुम बाद कुम बगी पे नो मशहूर आते स्पार्ना था आगे की बताए कोई ताज़ा है तो नो कलेक्टिवली ऐसे ना हो कदम वाक पे नो जी माँ की क्योंकि नो उस आज जो है कोलर्सिंग नक्शा मशहूर हम बिग रहे पे की उपयोग ताना का ड्रामा था उधर तो लोहा डाल तो दी एक्सपर्टेंस हो माँ की उपयोग की दरकार लेते हैं रुझान उस आई बिग रहे को मारा ऐसे कोई ना ऐसा ये स्टार्टिंग में ना ऐसे कोई ना डॉक्यूमेंट्स है सोफा ऐसे कोई ना ऐसा ये क्या समझी हैंडलिंग तो और कदर बच्चे कोई ना क्या नो जी मागे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटिंग का मागे नेटवर्क डॉक्यूमेंटिंग तो
1: दरकार
0: है भी सब प्री हाँ तो दरकार हो रही केस लेते प्री लिटिगेशन है ना मसीदमता अखोई ना मरुओं डेडिकेटेड मेडिएशन सेंटर सयांग हाईबनी चेरा कोटे डेडिकेटेड मेडिएशन सेंटर से नत्रगना लंफेल पात मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी के ऑफिस लापीर सोमद की पैसा पुगे कहीं केस लाकदी ममी लेरबने की चे चांग पुबीरा अतोप पार्टी चे था कौरनी कौर कानद पार्टी अनी से फमीनर कानद ट्रेन मेडिएटर ले लंफेल पाद फमग मैम अदुदगी कनानोम एसाइन तौरनी हुजी की पर्टिकुलर केस मबानी से यानबर येंगनी यानरीब पोटो मथंग लाप लोक अदालत अम तौदोरीब नेशनल खंगदे स्टेट की ओरगसु मफम मतंगिना दरकार लेरगदी लोक अदालत से दुम फमेब मरुओं चही थाहुम खुदिंग मरी रक्ती नेशनल लोक अदालत फम्ब सिमदी लेरेब सिगी मथक से अहेंब दरकार लेरगदी दुम ममांगदे याम फममेब अदुना मस सुमाइन तौरकांद लोक अदालत से यौवीरगा असाइगी यानरगदी कोर्ट की चाप मानब डिक्री एम फंगनी अदुना करीगुम हयंग पार्टी अमदुना सोइरागदी मदु कोर्ट अखोने एग्जीक्यूशन नेना थाबे यारे अदुना कोर्ट तौबद चंगदोब पैसा अदगे अम कोर्ट तौरगदी मागी प्रोसीजरल खर लैदोइने मदु फ्लेक्सिबिलिटी लाकदोरिनेब कैम जाउरोइदोइनेब कोर्ट की लॉ ना हाइब करै कै चल ओइदोइनेब अदगे ममन चंगोइदोइनि याम थुब जस्टिस अम पोरकनी अदुना अदुगु म लैबिरगदी थिन्दादना खै मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की मखाद लैरिबा डेडिकेटेड मेडिएशन सेंटर सिंग नत्रगना लीगल एड क्लिनिक अमदी अखोइगी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की हेड ऑफिस होना लंफेल लेरिबा कोर्ट कम्प्लेक्स लेरिबा एडीआर कम्प्लेक्स लेंबीरो अदुगा सोंगी दरकार लेबिदो खोइ दुम करी करी नो हाइबदो दुम हाइजरगा सोंगी अवाब दुदो खोइ मथिंग पांगजे के
1: तानरगा दुम मखा तान कोन तंग स हेलो
2: हेलो
1: हेलो हाइब यू हेलो
2: हाइब
1: हाइब रा ताजरे ताजरे मिंग लाइफ हम तंग हाना

नहालुन की खंजल ताबीरे थरम संदोक न तहन जरीबा से मेघर शाम को हम दशमिक मंगा द संदोक चबा आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिने।

0: Akasbani Imphal, Hauzik Manipuri da maroi pa pau tabirase.
1: Akasbani Imphal, Hauzik Pabu ki maroi pau. World S Vaccine Day nalak pada Mukhyamantri Imnam Kham Chana yaifa pau jel pirakli. Warul lamada Mukhyamantri nahai, Malang ki oina SIB S maru phangna muthat naba sangsilak pa khongjanga sibu, mai pahna bohana bada, baiganik singna SIB S tagi ngaktuk naba madi, laing naba gidamak thijin humjin ba, kanar bhitak masung vaccine singa puthok pana, saurubu mateng oiri. Kangpopi jila ki manung chanba lailon wifi amasung khairam wifi khul singi awang thang basaruk ta laiba sing sang singda security force na thiba magi thabuk chathakre amaramda Imphal East jila ki hangang police station ki manung chanba khabamlam khai makhalai kai degi ngarang pripa ki miyoi amasu phare ngasi malayam ki museum namit ni kumjali singam samapan homputra taret ki ngasi ki namit asida international council of museum na malayam ki museum namit pangtok pahuraki Palanthor masih pangtuk pergi meruoyo pandam di museum di matang da masung kala sanskriti amadi itihas ke sagonar opalam singi maram da miam de hena khanghanna bani. Narcotics Control Bureau NCB na Bharat Myanmar gengam khela na drug lalon mudi chaunu siana ba thangchin tuang kau ba Myanmar masa amadi ali degi phare. Mahaku masin hangbadagi Myanmar degi Mizoram Manipur Assam masung Tripura phaudu na Bharat amadi Bangladesh ki mahum ke ada ngam khela na drug lalon mudi thabukta yam na chaunu siana ba miu ini haiba khang mangam lei. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंस विक्टोरिया प्रधानमंत्री वोल्फ क्रिस्टर्सन अमदी स्वीडिश सीईओ सिंग उनदन वारी सनकरे उनबदु द प्रधानमंत्री न भारत अमसुंग स्वीडन की मरकता गणतंत्र इनोवेशन अमसुंग सस्टेनेबिलिटी ने सिंग बगे लमद लाइनर क्लिब मरि सिंग न हुंग न निंग सिंग की अमसुंग कांग्रेस लोसिंग बा भी डी साथीसन नसी केरलम के मुख्यमंत्री न वासक लौरगानी तिरुवनंतपुरम द नसी आयु लोसिंग बा असिबु राज्य दुग राज्यपाल Rajendra Biswanath Arlekar na thabak paiba masung aron bangakpa gi wasak lawgani thormada do congress ke president Malik Arjun Kharge Rahul Gandhi Karnataka Himachal Pradesh masung Telangana gi mukhyamantri Singh chu saruk kya gani paulo jere

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड मॉर्निंग मणिपुर की थौरम नहीं तारा नोकचरी
1: थैंक यू
0: होय कना होय बिरा बनो
1: पार्ट टू देखी एनके विजय
0: एनके विजय लाइफम दो मुक्त का है भी होगा
1: थैंक यू पार्ट टू
0: होय थोंगसु दगे को होय अद कोई विजय की से रेडियो से दगन लेब माले खसिक तंग लाथोक पिरगदी एकोय तो सुनुंगाय जगदबा को रेडियो सुमें से हाई हो ब्रो हेलो हम थागत सरी थोरम सरुक या भी रख पाई सही लान थोक सरी

0: हेलो
1: हेलो गुड मॉर्निंग मिस.
0: गुड मॉर्निंग
1: मिस. सही है कुनो मणिपुरी फिल्म से इंतो कंजे गए
0: यानी यानी करम बस में सही
1: कोई लव लव फिल्म बजे सहायता गाज में जा ना वो जने सब फंगर वो निकट तक जीता हुआ
0: था. होय होय यामना फजा वैसे ही खन भी रही सी बुक ना आई भी दोइनो
1: आई मिन तो जे आई फोन दो जे जे कुनो दिगे सवाचन का उडगी कुमा टेन सने जाऊबा.
0: होय अचिनब थबक लेबिरग कायथोब तौबिरैराबा.
1: ओ मी सैजे त आ आ सिंगोन द सम मसेजे आ हवाई जवाई करते
0: हम्म. करी करी मरुवाई ना करी करी होना भी रीगे हाइडी मना मसिंग सिना
1: अजी आ जीवन संबंध सुमु खाना जरूरी नहीं.
0: होय करी करी मना मसिंग ना नम ना हो जिक्ते आ कालेन की मतम सोई बनी ना गरांग देगी कोई इंगा चंग बहुत रे क्वा.
1: हो हो मिस अपने आ थबी तरबूज गुम्बा अपने
0: तरबूज कुम थबी गुम से मैम पुथोरपोबनी होंगे कई हईने को क्या क्या कमाई थबीगे थबीबसी कराई थबीब
1: तरबूज
0: के जी दुमसा था इंफा था ललोन भी ना लाग लौब नत्रग इस चल
1: ठोदना
0: खनबीरक पैसा सूए कोई खुदोल तमजरक लगे तामिनर से को.
1: Thank you.

समसदगी अनि सुबोइना लान्थोकचग दोरी बेसै दिने समदि पुष्पारानी अनि पुन सबिना बनी इसैगी मये नरेन्द्र निङोम्बा सैराङबा ओकेन अमाकचम

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक मणिपुरी दा मरोइब पाउ ताबिरसे
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक फाउगी मरोइब पाउ दा वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ना लाकपदा मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाने ये पाउजिल पिरकली एचआईवी एस की मरमदा मियामदे हेन खंगनबा मसुंग मखाताना थिजिनदुना पुना थौदांग लोमिनदुना एचआईवी संदोकप थेंगदुना मसा मऊ फब तुंगी खुनाय एम सेमलासी हायना मुख्यमंत्री ना फोंदोकली ngasi malem gi museum numit ni kumjali sing masama pan humbudra ta ki ngasi gi numit asida international council of museum na malem gi museum numit pangthok pa horaki numit asigi palan thoram raijagi art and culture department sinduna imphal gi manipur

आतिफ असलम सैसक पसीदी सैनी मथंग मथंग ताबीरे मथंग असदी अरिजीत सिंह बादशाह जुनिता गांधी नकास अजीज मयामदगी सैम लांथोक्चरी।

0: 코티 질로신 게 더부가 파르가치 아무라이도 마치기 한우가 지나네 헝덕시나 빼빼 흥 레이나 조마마가 리짜이 엄마가 이차이 엄마가 링아 엄마가 하이 야루이 도리 해 동아
1: 하이 사두 머롤로 렐루타 토라이 nga sidi kanam ta lak tra bro nang hotin sibu
0: la mei pu mi sure lo chel lage toram iba nga sidi puna last tare
1: i he i pu ko nuni nang bo
0: e abok ta bo ko badi kai su hai de i pu ko da na
1: pabung ko pabung ko i pu ko ba i ya sao bi ni na bo ta di abok ko kai su kai de ma di hanu bi ni ai ti ka da ai ti gi
0: i pu bo ये पाबुंग बु जहि के हजिन खरगे
1: ओली मरफु यामद्री कैनो
0: यामद्री यामद्री जहि ओहु मरी दि हिंग बयारी बाबु
1: बिष्णु बिष्णु जहि ओहु मरी
0: पुछी जे तंबंग बनाते दा बाबु छे चाले जरे कोई नहीं निंगी ब्रो
1: आई दि जहि यांग के हम पुदी हिंग की ये न खली हचांग छी दि छै पूरा फिननी
0: समदी
1: समदी नरांग संग मनी

0: खोली न तरने पानी दा तथो ले या
1: इमा बुआ
0: अस कथे का रही ब्रने नंग बुआ
1: होय खोतेन गे वाला पा खरा लई बला पनी इमा बुआ अस इमा बु थेन ब याम नुहाय रे
0: ने उदा बसु पुई रे कम दौरिया हा नुहाय री दना
1: हिंगी बहाय दुनी दा इमा बु इमा बुआ कथेन सिदाई द लई ब पाक सिद मेहाक त फमसिना मफम सुवा सुम हांगे लाओ इमा बु ला
0: कोई बदि यात्री को सुनुपादो सानुपो सिंगाय रंगदोरी बनिन हे
1: सुनुपादि
0: हेरा इपानुपागि नेम सुदो
1: इमाय पेमा
0: सानुपो से नोमगि अमनि दिलै दयाद्रे इंगाय ग चक्रीगा इस खांगला गम पोंतिगु
1: थामसिमाबो इमाबोपु नोपानुपागि दलैरिरो
0: माकि ने क्वाटर दलै सेसे लेबावै नानसे सासेसे
1: इमायम हाउनि आ पाबुंदि इमाबोकि युमद चलुरे हाय थेंनारते हायना
0: ए इपामद चत्तेदा इक्वागि सिदनिया मतम खजिकतं लेबियो हायबसि कुइरबन तांदुम सारे हायदननिया सिदादुम लाब
1: लेबबो नुवाय ब्रो
0: ए अहिना नुवाय तब लैतेदा इमाबोकि पुंनिं वाखन्दनिया अवाब हायबसि चंज फंखक पिदि ऐदि मफम खुदिं मत चप जाना दुम नुवाय बगमि अवाब मसे खंदि ए
1: अदो इमाबो आद इमाबो उदबदो कयाम नुवायते पाबुंदुसु अंगाउबग पांख ओइरे चागनि थकनि अमत खंद्र मान इमाबोकि खोंगुल लिरुसिदा हायले
0: आसेसे सिसाउसे कुइन फमगुमसि नंसु थेंखिनि लमलापि
1: पाबुंदे करि हायगे
0: तथोलेया होगलसि चसिसे
1: नायखु इमाबो
0: तथोलेया नंसि इमाबोनि यानिङत्रेबो
1: ऐगिसे पाबुंगि वाङाते नते ऐ इमाबोपु यामनुसि इमाबोकि खनबद यामवा
0: इमाबोकि खलुनो ऐदि अवाब मसक खंदि हायरेदना
1: नंग थेंखिनि ऐ सुसनिङे अदो पाबुंगा मुतंदि उनबियु इमाबो पाबुंगा पुंसिगि उनारोय खलबा
0: कारि हि उनदनि रुहुङ बातोन तोरो हायो
1: निनि मतौले बिदि मामु कालिन जाउगि दलैख्रे इमा बुक ताद्रिब्रा
0: ए अदुना निदना अंगाउबोगि पंख ओइरिबदिदि
1: इस
0: नदुतिदा पाउसिदिया
1: अदु खगिना तेदा इमाबो
0: नंग सिदिनि थोन लान खंगन खरे हे बेमा
1: इमा बुक्सु अचुम बंगांग देना
0: ओ आ आयम फंधरगे था थोके थोसुन हायो हाय इमा बुक तारगे करिनो हा आइना अरान बंगांग लिबसे करिरोबा
1: इमाबोपु अवाब मसा खंगदे हाइदाइने
0: होइने अदुबुदि हाइने
1: अदुगा करिगि पिनो इमाबोति नोंन नोंन पिसिं थब ह्याम नाय नों थांग लिसिंगि आसांग ब मैइने इमाबोकि थमोय द तार उदो बुइनिङ इमाबोन कपलि ब थमोय दो लोचिन ब होन ब द माइथोंग द मोमो नोपनि नात्रो
0: तथो
1: पिदो अमुत तै थोकजगे इमाबो
0: चिन्थजे छन नुङाइ बगे पिनि कतो बगे
1: आया निंदे इमाबु इमाबु इमाबु नुंगाय हबसे ऐ पुंसी सिद याबु गमलो करिनो अमदि लोतु न थमले नत्र ने इमाबु ऐ पुला लब्रो
0: नंगु लाली हायरो पति नंगे पीतु द इमाबु ने इरान लंग सिद बथु ओइद्र ने पीतु तै थो त थोले इमाबु वहा मतंग हाइगे अदुगने हनरस
1: तापी उइमाबो
0: तथोले पुंसी हाइबसिदि सबमिन नबया ब खोंलोय अमगा सबमिन नब सांग नब खोंचत नमन मियोय ब खुनाय मियोय बगि मरी हाइबसि थाजब अमदि नुसी ब हाइबसिद युमफम ओइबनि मियोय बसे लानगन लान बसुया इशोर द सुलंगसिन बयाय ngak piu hai che ba ya
1: ngak pi ba su ya ngak
0: atu bo nung si ba da mi nam ba di ya ti tha se ba da nam thak to ba di ta wei da ba ta ba pi nung si ba di nung si tu na tu lai ka to
1: ba ngak bo
0: nung si ba hai ba si di he na nung si ka to ba di ne awangi awangi sa ko लेंग दना दुम लाइक दो बने नुम सी बदी ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯗꯅ ꯃꯁꯔꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤꯅꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯪ ꯈꯪꯏꯗꯅ ꯏꯃꯥꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯂꯝꯂꯕꯅꯦ
1: ꯏꯃꯥꯕꯨ

0: हाइंगी थोरांग हाई दी करी नो
1: हाइंगंता ब्रिंदा बोंद चट कनी
0: थमाने को
1: लेका गी मयाम चट पदा या हो रगे तो जब बनी आई आई चले फंबी हो को को
0: नाइ को अमुक्त यंकी के से ले थोरो को आई बोंग हन्ना अमुक्त यं थोरो को ने नंग बो
1: आई बोंग आग पी ओ हो जी आई की ओयरी बा माई थोंग से उठ पंगम जरा रो आई बोंग आग पी ओ
0: मालिका नति नंगी सिवो हम कन्ना उनरा रोई सिरा
1: ननाई ननाई आई दी
0: कई जो वा
1: वृंदावन दगी अबुक हलके खंदरे

ताइबंगबालगी फजबा कया एखोइगी मिटकी मतेंगना उबा फंगी वाखल नुगाइतबा पुकनिंग वारकलबा मतम दहाइना रिबनी अजिकपा मफम द चतुना चिंगया तमयागी फजबा येंगलगा इंगना पोथानिङि हाइदना अदबो मिट उबंगम दबा कयासु एखोइगी इरकता लैरी मखोइसु अवाबा नुगाइबा पुमनमक फाउरिबनी मिटना उबा फंगद्रबासु थमोइगी मिटनादि उरी नुसिबगी सक्तम

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो गुड आफ्टरनून मैडम
0: गुड आफ्टरनून ताराम नोक्चरी मिंग लाइफ हम हाई बीयू
1: गंतो जाए जाए पंगे ओकम नकाई ओकम ओमितान
0: मरुप ओमितान से दिकारी करम बा मणिपुरी फिल्म से ताबी गनी
1: मैडम अच्छी दी कनो सिलो लिली फिल्म भी ने
0: और
1: सुजिना का समु कुमार के साथ तो ताजा रही मैडम
0: सिलो लिली फिल्म दगी
1: होय
0: स्वामी कुमार का रोसिबिना का सकपा थिंग नररे न तो वैसे से ओइ दुने बको इसे यसे की सैरंग बा कामेश्वर सापम सैरंग बना ओइ नाम गीत अदुदे इसे यसे मयाम पुन्ना तामिनारसे
1: मेदाम थागचरी
0: थागचरी

शुक्रिया रुजिता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ और मस्त होंगे और सुनते हैं आज का गीतमाला कार्यक्रम में गाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त थुकचुम गीता के संग आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के एफएम संगाई चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, खुशी सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती बल्कि हमारे नज़रिए से जुड़ी होती है। सुनते हैं आज के गाने नए पुराने में लम्हे फिल्म का ये गीत, जिसे अभिनीत किया है श्रीदेवी और अनिल कपूर ने, आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और इला अरुण ने, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है शिव हरि। और ये गीत अपनी मधुर धुन और राजस्थानी लोक संगीत के मिश्रण के लिए बेहद लोकप्रिय है। तो सुनते हैं लम्हे फिल्म से ये गीत।

दोस्तों अभी सुनते हैं सुनील दत्त और आशा परिक द्वारा अभिनीत फिल्म चिराग से। ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, संगीत मदन मोहन का। ये गीत शास्त्रीय राग सुर मल्हार पर आधारित है, तो सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों अब सुनते हैं देव कोहली के लिखे इस गीत के बोल को फिल्म हम आपके हैं कौन से। संगीतकार है राम लक्ष्मण और इस गीत में आवाजें दी हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने। ये एक प्यारा और चंचल रोमांटिक गीत है। तो सुनते हैं ये गाना जो है ना हरे भरे खेतों और प्राकृतिक नज़ारों के बीच फिल्माया गया है माधुरी दीक्षित और सलमान खान के ऊपर। तो सुनते हैं ये गीत।
1: 10 9 8 7 6 5 4 3

दोस्तों आप सुनते हैं अपने समय के सुपरहिट सदाबहार गीत नदिया के पार फिल्म से है ये गाना ग्रामीण परिवेश शुद्ध प्रेम और यात्रा के दौरान पनपते रोमांस को दर्शाता है। इस गीत में आवाज़ दी है जसपाल सिंह और हेम लता ने, गीत का संगीतकार रविंद्र जैन, और ये गीत जो है फिल्म

दोस्तों, फिल्म का नाम है हीरो। आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मनहर उदास ने। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: बाबा, यो चाहिँ सिङसिबु कै छाना बनो
1: मसि युम बिल्डिंग थोंगना सिंग बसाबा द हाबना न बयोट मखल सिंग
0: अदुआ यो सिङसिबु कमाइना सेमला केबा
1: लैरोन मनुंग द फंगलीबा खोंगी पोथोक हाइबडी मिनरल कयागी मनुंग द आयरन ओर हाइबदो अदु सुंदो ओगा स्टील सेमला इलिबने
0: लैनुंग दगी थावना चिंग बसु लथोगा अमुक सुंदोक प्र
1: फोसिल फुएल हाइना खंगना रिबा थाव असिना मेसिन अमदी ऑटोमोबाइल सिंग चलाय रिबनी ने
0: तो येंगो बा सिगे खुदोब सिदा हाबलीबा नुंग मखल सिसु खोंगी पोथो ओइफम थो इक्वा
1: तांग लब धातु मखल हाइबदी शना लुपान सिंग ब कयान लैतेंग पोलम सिंग सारी मिनरल रिसोर्स हाइबसे अनो ब खुनाई यांगलेन सरु ओइरिबनी
0: मदुना करी हाइ नो बाबा
1: येंगोने नो पिमसा नुमित खुदिंगी आइकोइना सि नरीबा पोलम कया चाकुम गी कोन लिक मशीन टेलीविजन वेयर अमदी लैतेंग सिंग से उमनमक मिनरल मखल खलन साबनी
0: आइखोगी परादादी मिनरल सिंग असे ऑर्गेनिक ओइब पोलम नी मसीदा एलिमेंट अमा नत्रग अमा देगी हे न यावी हाय मसीदा अकंगना ब केमिकल अमदी फिजिकल गी मचाक सिंग यावे सो हाये
1: खुदा मोइना थुम हाइबसी इसिंग द तुम बंगम ही को अदुबु क्वार्टर्स हाइबसी तुम बंगम दे फिजिकल प्रॉपर्टी की खुदम हाइबसी मचु अमदी कन्ब की मोंग अदुनी को कोयला की मचु मुई नत्रगन वाउथांग ने क्वार्टर्स की मचु दी अंगांगबा अमूबा पिंक नत्रग पर्पल मचु ओय को मिनरल अमा हाइबसी टॉक अमगुम न थोट पा अमदी डायमंड गुम न कन्ब ओय बे आय माइनिंग तोदना मालेम गि लैनुंग दगि मिनरल सिंग लथोई को
0: बाबा मिनरल सिंग से मखल खाइदो प्र
1: खाइदो इन पिमसा मखोइबु मेटालिक अमदि नन मेटालिक हाइन खाइदो इको मेटल सिंग हाइबदि योट कोरी लुपा मसुंग सना सुंदोक लिबसे मेटालिक मिनरल सिंग दगिनि हाइरि बधातु सिंग सिदा मैसा अमदि electricity phau du na chat pa ngami ko makhoi si mau sana ors oina phangi
0: or hai basina kai

0: ऑस्ट्रेलिया गिनिया ब्राजिल अमदी सुरीनाम नि को
1: अदुगा नेबा बा इंडिया ददी करम करम ब मफम द बॉक्साइट फंगे
0: वहांग दो नंग ने सोए द नै वंद हंग कनी है बा आई दी खंगर ब निंग साय से इंडिया ददी झारखंड उड़ीसा मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु द बॉक्साइट फंगे को मिनरल रिसोर्सिंग ख्वाइदगी यामले सिजिनबसे साउखतलब लेबाक सिंग न महल हौजिक सिजिनरी बचांगसी मखा लेप्तन अदमक जथर दिने हेनगलगदी ब डिमांड सिंग सि मतम सांग न फंगमंग मोइदोरि बरमसिना मिनरल रिसोर्स ngak tuna निंगथी न सिजिनब याम तंगाई फदे को
1: कंजर्वेशन गी दमक पैखत पयाबा थौरांग सिंग दी कहिनो बाबा
0: मिनरल रिसोर्सिंग कंजाप तोबदा पैखत पयाबा थौरांग कयागी मनुंगदा मिनरल रिसोर्सिंग गी महुत सिनब याबा सिंग थीरग सिजिनब सिजिनब गी चांग हनथाबा अमुक खन्ना सिजिननब अमदी रिसाइकल तोबा मिनरल लौथोकबा अमसुंग प्रोसेस तोबदा यामन चानगदबा पंबई सिंग सिजिनब हाइबसी यावगनी अमरोमदा पावर रिसोर्स हाइबसी खंगनन बहोनसी थबक थोंग मखल खुदिंग मक्त पावर नत्रग इनर्जी हाइबसे संगि मसिना एखोगी पुनसिदा मरु ओइग्रबा पोषक अम ओइरिबनी को
1: इनर्जी हाइबसे मरु ओइना कदाय दगी सिजनरबगे
0: अदुबा इलेक्ट्रिसिटी हाइबसे इनर्जी की यामना हाइबदि ख्वाइदगी मरु ओइबा सोर्स
1: ओ
0: मसी थर्मल न्यूक्लियर मसुंग हाइड्रो पावर प्लांट सिंगदगी लोइ को थर्मल प्लांट सिंग चलाइबदा कोयला मिनरल ओइल नत्रगना नेचुरल गियर सिंग सिजिनरी अदुगा न्यूक्लियर प्लांट सिंगदना यूरेनियम थोरियम गुम्बा न्यूक्लियर फ्यूल संगे को
1: हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिंग दी इसिंग की मतेंग न चलाए बनी हाई न तारे बाबा अदुबु मदो चौराक न मतो कमदो न चलाए नो बा
0: सेंथरक पर इसिंग द यावरी फोर्स अदुबु सिजिन बा अमदी मदु की शक्ति न चलाए बनी अतै अपिक पर पावर प्लांट कर दी सोलर नुंगसीट टाइडल अमदी जियोथर्मल सोर्सिंग सीनरी को
1: बाबा पावर रिसोर्सिंग असे मखल खरे दि छोइदन नम की खाइदोंगनी अदुगी मतांग द सु खिताई बियो बसे
0: नंग सिदी बिम वारी हावरदि लिए प यादबा हाइदुनी को से से यंग से पावर रिसोर्सिंग बु कन्वेंशनल अमदि नन कन्वेंशनल हाइना खाइदो इको कन्वेंशनल पावर रिसोर्स हाइरगा कोयला मिनरल ऑयल नेचुरल गियास हाइड्रो पावर अमदि न्यूक्लियर पावर बुखंगनी को
1: अदुदि नन कन्वेंशनल हाइरगदी सोलर विन दगी टाइडल जियोथर्मल बुखंगना बनात्रा
0: माने नंगदी निंगथिने खंगना बहोनबो जानिदना याम फै मदो
1: अदुगा ngasi male masida khwaidegi yamna sizna ba energy sidi koila adagi di mineral oil
0: hayo
1: amadi natural gas dagi phangbani ko
0: yam sume ko mamang da noina tamki pasing da thengaram basu yai na na hoji pan khriba koila mineral oil amadi natural gas hai basi ko masi matau kamdau no oikibage hai bu khanga bra
1: adu bra chahi milen ke agi mamang da pambi amadi sa sing लैरोल नुंगद फुमजिनकि मदुदगी हाइरिबा कोयला मिनरल ऑयल अमादि नेचुरल गियासिंग ओलखिबनि मखोगि ऑर्गेनिक ओय बहाउराफम अदुगि मतुंगिना मदुबु फोसिल फ्यूल हाइने कौने चुमब्रबाबा
0: उस आइदि खंगु खंगु दिने इशादि या माहिर मजानि दना हा वेरी गुड फोसिल फ्यूल हाइरिबा सिंग असे लैनुंगदा खोंग ओइना लेब मखलनी को मसी ओइरकपदा सही मिलियन कयामरम संगबने मसी लोइबसु नायगनी मरमदुना ने हौजिक लेरिब मिरोल सिना तुंगी मिरोल की दम खंदुना कानादबदा सिजिनब तोकदब अतोप सोर्सिंग थिगदबनी को
1: बाबा कंजर्वेशन हाइबसी मियोय खुदिंग मक्त खंगनदुना मसी की तंगाई फदबसे खंगन बचुमी को
0: गुड कम टू मी याम सुमबवाने नंग हारिदो लेबा कमदा लेंगाक लिबा वारेप लौरी बा मिहुट सिंगदगी हौरगा मिचम सिंग फावदा इनर्जी लिक न सिजिनबा अकक न बा कांगलोन अमा चनहन बग लोइनना इशा इशा न खंथबसे असुकी मतिक सुमी

तगुप तनिकला थवा लगता नोंमदोल था जरी नहाकना आईगी थमोईदा नंगी कोकला रोईदबा सक्तमगी मजूसिंग हंजिन हंजिना संखरे नंगोंदा लाई चुरबा आईना कयाम कुईना नंगबुंगाई खुगी।

हंजिन हंजिन थीरी फजर अब कुंजल के आगे मरता नहाक तगी कुंजल मथंग दमुक तमी नसी राज इलांबंगी कुंजल दा अजिनिंग थाउजाना सेरिंग बा अमदी राहुल ब्लू ना सेरांग बा इसे इसे ऐसे बुताबी निंगे हाइडुना खंबीरकली बा मरुप सिंह दी क्वासी फाइडगी हेरोजिट सेना थोई थोई बिरजू

0: ता बिक्री गायको ता किसी थरुम संदोकतुन तहन जरीबासी आकाशवाणी इम्फाल के एफएम संगाई चैनल ने हौजे पुंफम सिदलान थोक्सरी सुमांग लीला वासकमा लीला सी यहान बसरु सानबिरी बकांगबो इरम द मणिपुर आर्टिस्ट एसोसिएशन की लीला कांगबुनी ताबिर सी सुमांग लीला वासकमा लीला सी की अहान बसरु
1: चिंतम पुकपी मागी।

0: Hi, Tomba.
1: Che.
0: Nangi 50% discount pibe resto Pokemon pack to. Loi re hai ne karmai to rino.
1: Loi di. Kadai de gino da. Aduga ichine ne 50% hai do. 50% khatna te 50 to 60% ni offer piri se. Aduga stock to leitra ga sune. Haujik adumak book tok silaga discount adumak te adum pibe gi khudong cha ba su leibini.
0: Hai bidi
1: ne. Kana gumba mana macha gi luhong bagi on pot oin hapsening ba. Luhong ga de bidi matam khara wa liba. Natraga yum gi darkar oibe do. Haujimak book tok silaga di tha khara gi तुम दो ऐसे सिल्वर जुबली की ऑफर ओइना अच्छा ऊपर डिस्काउंट पीली बसी के लोने ना अधुमक फंगतो इन्हें है बा
0: अधुदे इन्हें ये मचानु पीगे लोगों बगे है बे दो रेस्टो पोकेमोन पार्क सीधा है बनी हाउसिंग मार्क बुक ताऊने ना बा है बीरु रगे
1: होइसे रेस्टो पफ मैट्रेस मियाम ने है ना खंग पीरे हिप पद हक्सांग दे याम ना कंफर्टेबल ओइबा मोम पार्क नी सिल्वर जुबली की ऑफर सिंगसी अदोम जो सोइदन लोबी हो नसीमक लेंसिन बिरक्सी पेना स्टोर

ताहन्जकिव गीत रसिगलो इनरा ताककसिदा गीत सिंह ला थोक्सब लोइजरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिनु मिदांगी पुंग तारा मखाइ तारे गसिगी एफएम संगाई चैनल गी अहुम सुबु थोरम परिन लुइसिनजेनबगी मतम सुयोरोकले हयें लेबा पोपु नुमित मेगी तांग तारा मपल इंगागी हुमनी पानबा अयुकि पुंग मंगा मखाइ ताबु मतम दा आकाशवाणी इम्फाल गी हानब थोरम परिन सन्दोक पा हौजगनी मतम मदु फाउबगी ओइना थोरम ताबिरि बसिंगी मफम दगी काइने याथनि जरी पिने बिरसी जय हिंद।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है. अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम. तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से गीत के साथ.

दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। पुराने गीतों की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानते हैं? इनमें शोर नहीं बल्कि सुकून होता है। हर लफ्ज जैसे किसी ने दिल की स्याही से लिखा हो। इस बात पर मुझे एक शेर याद आता है, कुछ धुनें वक्त से नहीं हारती, कुछ नगमे उम्र भर साथ चलते हैं। जो दिल में उतर जाए एक बार, वो गीत कभी पुराने नहीं लगते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। फिल्म है वारिस।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हर सिंगार अपने पसंदीदा चैनल एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां हर गीत एक कहानी है। कभी सोचा है दोस्तों आपने कि पुराने गीतों में इतना अपनापन क्यों लगता है? शायद इसलिए क्योंकि तब संगीत सिर्फ बनाया नहीं जाता था, बल्कि जिया जाता था। अब चलते हैं एक और सदाबहार नगमे की ओर, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

दिल अजीब चीज है दोस्तों, कुछ आवाजें इसमें हमेशा के लिए बस जाती हैं। कई बार कोई गीत सुनकर लगता है कि जैसे जिंदगी थोड़ी थम सी गई हो, हम फिर से उसी पुराने मौसम में लौट आए हों। इसी के साथ मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि वक्त बदलता गया, मौसम बदलते गए, पर कुछ नगमे थे जो दिल में ठहरते गए। अब पेश खिदमत है कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों कभी कभी कुछ गीत ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने हमारे अपने जज्बात चुरा कर लिख दिए हों और उन्हें संगीत में पिरो दिया हो, और शायद इसीलिए बरसों बाद भी हमें वो गीत उतने ही प्यारे लगते हैं जितना हमने उन्हें पहली बार सुना था। चलिए अब एक और खूबसूरत मोती पुराने संगीत के खजाने से।

दोस्तों कार्यक्रम हर सिंगार में आज यहीं तक. फिलहाल वक्त है समाचारों का और समाचारों के उस पार कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत लेकर हाजिर हो जाएगा आपका ये दोस्त शमीम. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में

50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में दो विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार, मुकेश और मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मत्स्य उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। वे श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into Force of Trade and Economic Partnership Agreement, TPA. He underlined that stakeholders on both the sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals and startups. Prime Minister Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy. He appreciated Norway's global leadership in clean energy investments, maritime decarbonization, ocean sustainability and climate finance. Prime Minister Modi urged the business communities of both the countries to forge new partnerships, identify emerging areas of collaboration and strengthen economic cooperation. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. A number of business agreements between India and Norwegian companies and entities were signed during the summit. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement yesterday, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping. Prime Minister Modi said, "The India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity." In a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Defence Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no first use policy, it will not succumb to nuclear blackmail and stands ready to respond firmly to any enemy misadventure. He highlighted India's growing stature on the international stage due to the unprecedented progress achieved under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Mr. Singh emphasized that India is rapidly advancing in the semiconductor sector, which he said is not merely a story of technological progress, but also the story of a new India. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India has set a target of achieving exports worth $1 trillion this year and $2 trillion over the next 5 years. He asserted that this will be the true hallmark of an Atmanirbhar Bharat. The Commerce Minister was addressing the website launch ceremony of Bharati Vyapar Mahotsav in New Delhi.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में जो आज पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जूली, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। अंजाम जो भी हो मुझे इसकी नहीं है फिक्र, अंजाम जो भी हो मुझे इसकी नहीं है फिक्र, आगाज दास्तान सफर आप ही से हो। ख्वाहिश है पहुंचो इश्क के मैं उस मकाम पर, ख्वाहिश है पहुंचो इश्क के मैं उस मकाम पर, जब उनका सामना मेरी दीवानगी से हो, जब उनका सामना मेरी दीवानगी से हो। रिश्ता बहाल काश फिर उसकी गली से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो, जी चाहता है इश्क दोबारा उसी से हो। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है आग ले लग जा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के और फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

बीते रिश्ते तलाश करती है, बीते रिश्ते तलाश करती है, खुशबू गुंचे तलाश करती है। जब गुजरती है उस गली से सबा, खत के पुर्जे तलाश करती है। अपनी माजी की जुस्तजू में बहार, पीले पत्ते तलाश करती है। एक उम्मीद बार बार आकर, एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है। बूढ़ी पगडंडी शहर तक आकर अपने बेटे तलाश करती है। बीते रिश्ते तलाश करती है, खुशबू गुंचे तलाश करती है। जब गुजरती है उस गली से सबा, खत के पुर्जे तलाश करती है, खत के पुर्जे तलाश करती है। अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मुकेश की और फिल्म का नाम है कटी पतंग।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेल्ले से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा, ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो आप पहला गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है आ गले लग जा, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

जब भी आना, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को आतुर होगा, जब सूरज डूब रहा होगा और चांद निकलने को आतुर होगा, हम मिलेंगे समंदर किनारे, किसी हल्के से सुनहरे थोड़े धुंधलाए से रेत के घर में। ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ न सको, ये दुनिया कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकेगी कि तुम आ न सको, और न ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह न दे सके, और ना ही ये हो पाएगी इतनी छोटी कि हमें मिलने की जगह ना दे सके। तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर, तुम जब भी आना अपने साथ ले आना समंदर। अरब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है अवतार, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है अमर।

जरूरी है जीवित रहना यादों का, जरूरी है जीवित रहना यादों का, जैसे जीवित है याद गौरैया की उसके जाने के बाद भी, जैसे बनी रहती है मन में खुशबू फूल की उसके मुरझाने के बाद भी, जैसे बनी रहती है खुशबू फूल की उसके मुरझाने के बाद भी, ठीक वैसे ही याद रह जाना है मुझे, ठीक वैसे ही याद रह जाना है मुझे, और ठीक वैसे ही याद करना तुम मुझे, क्योंकि याद रहना जीवित रहना है, क्योंकि याद रहना जीवित रहना है, जरूरी है जीवित रहना यादों का, जरूरी है जीवित रहना यादों का। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है काला सोना, आवाज है आशा भोसले की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी सी मिट्टी लो। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी सी मिट्टी लो, फिर उससे दो बुत बनाओ, एक तुम जैसा एक मुझ जैसा। चलो तुम ऐसा करो, चांद से थोड़ी सी मिट्टी लो, फिर उससे दो बुत बनाओ, एक तुम जैसा एक मुझ जैसा। फिर कुछ ऐसा करो, उन बुतों को तोड़ दो। फिर कुछ ऐसा करो, उन बुतों को तोड़ दो, और फिर से वो मिट्टी गूंथ लो। फिर से दो बुत बनाओ, तुम में कुछ मैं और मुझ में कुछ तुम रह जाओ, और मुझ में कुछ तुम रह जाओ।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पांच देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी ने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पीआईबी ने लोगों से फर्जी दावों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। दिखाई पड़े पूर्व में जो सितारे, वही आ गए ठीक ऊपर हमारे। दिखाई पड़े पूर्व में जो सितारे, वही आ गए ठीक ऊपर हमारे। क्षितिज पश्चिमी है बुलाता उन्हें अब, न रोके रुकेंगे हमारे तुम्हारे, न रोके रुकेंगे हमारे तुम्हारे। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। इधर तुम उधर, तुम इधर मैं खड़ी बीच दुनिया, उधर तुम इधर मैं खड़ी बीच दुनिया, हे राम कितनी कड़ी बीच दुनिया। किए पार मैंने सहज ही मरुस्थल, सहज ही दिए चीर मैदान जंगल, सहज ही दिए चीर मैदान जंगल। तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है कलाकार।

बारिश में जब भी तुम्हारे शहर गया, बारिश में जब भी तुम्हारे शहर गया, ना तो तुम दिखे ना मुलाकात हुई, ना तो तुम दिखी ना मुलाकात हुई, पर बहुत सी बूंदें तुम्हारे शहर की, पर बहुत सी बूंदें तुम्हारे शहर की छाते में सिमट कर आ गई। बारिश में जब भी तुम्हारे शहर गया, ना तो तुम दिखी ना मुलाकात हुई, पर बहुत सी बूंदें तुम्हारे शहर की छाती में सिमट कर आ गई। कई दिनों से वो यादों की सीलन महका रही थी कमरे को, कई दिनों से वो यादों की सीलन महका रही थी कमरे को। उन्हें मिटाने के लिए आखिर मैंने आज कड़ी धूप में छाता खोलकर सुखा दिया। उन्हें मिटाने के लिए आखिर मैंने आज कड़ी धूप में छाता खोलकर सुखा दिया। और आज सुरमई में जो आप अगला गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, आवाज है सोनू निगम की।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज़ है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है बॉबी।

कुछ कदम हम चले, कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चले। कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चले। फर्क बस इतना रहा, फर्क बस इतना रहा, हम चले तो फासला घटता गया। हम चले तो फासला घटता गया, तुम चले तो फासला बढ़ता गया। तुम चले तो फासला बढ़ता गया, कुछ कदम हम चले, कुछ कदम तुम चले। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार 3:10 पर अर्चना होंगी आपके साथ छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ फिल्म का नाम है बरसात की रात सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण

0: ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। श्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पांच देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद वह कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के हालिया प्रकोप पर कड़ी निगरानी रख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है और एहतियाती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शुरू कर दिए हैं। इनमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को लेकर संसदीय परामर्शदाती समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि बैठक में एक व्यापक कार्य योजना पर चर्चा हुई। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, मानव संसाधन प्रशिक्षण, राज्यों के अनुसार विशेष पर्यटन सर्किट, बहुराज्य पर्यटन पैकेज और पूर्वोत्तर के लिए एकीकृत पर्यटन ब्रांड तैयार करने जैसे विषय शामिल रहे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले के धनवारी में कई ट्रक और एक कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक में 100 से अधिक लोग सवार थे। घायलों का इलाज कासा उपजिला अस्पताल में चल रहा है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, PM Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals and startups. PM Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy. He appreciated Norway's global leadership in clean energy investments, maritime decarbonization, ocean sustainability and climate finance. PM Modi urged the business communities of both countries to forge new partnerships, identify emerging areas of collaboration and strengthen economic cooperation. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. A number of business agreements between Indian and Norwegian companies and entities were signed during the summit. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement yesterday after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, PM Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping. PM Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity. In a gesture towards closer relations, PM Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Defence Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no-first-use policy, it will not succumb to nuclear blackmail and stands ready to respond firmly to any enemy misadventure. He highlighted India's growing stature on the international stage due to the unprecedented progress achieved under the leadership of PM Modi. Mr. Singh emphasized that India is rapidly advancing in the semiconductor sector, which, he said, is not merely a story of technological progress, but also the story of a new India. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda yesterday held high-level bilateral meetings with counterparts of representatives from Thailand, Iran, the Netherlands, Sweden and Mauritius. The meeting was held on the sidelines of the 79th World Health Assembly in Geneva. In a social media post, Mr. Nadda said the discussions focused on strengthening cooperation in digital health, pharmaceuticals, resilient public health systems and advancing universal health coverage. Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Justice Yashwant Verma submitted its report to Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday at the Parliament House. The report will be laid in both Houses of Parliament in due course. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Chennai Super Kings by 5 wickets in Chennai last night to secure a playoff berth. Put into bat first, Chennai Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs. In reply, Sunrisers Hyderabad overhauled the target, losing 5 wickets in 19 overs. Government has debunked a claim circulating online alleging that the government is going to issue gold bonds to temples in exchange for temple gold reserves. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, stated that the claim is fake. It added that the government has not made any such statement. And that is the end of this news bulletin.
3: सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

रात के 3:11 और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सफर पर निकले थे हम, सफर से मुलाकात हो गई। सफर पर निकले थे हम, सफर से मुलाकात हो गई। जमाना कहता है इश्क जिसे, तुमसे वही बात हो गई। जी हाँ दोस्तों, सफर पर चलते चलते ही कब कोई हमसफर मिल जाता है और फिर दुनिया, जिंदगी, सब कुछ बदल जाता है।

मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में फिल्म 12 क्लॉक से ये गीत आपने सुना। इरादा न था मोहब्बत करने का, इरादा न था मोहब्बत करने का, मगर आपको देखा तो इरादा बदल गया। सोचा था अब कभी किसी को आंख भर के नहीं देखेंगे, आपको देखा तो नजरों ने भी धोखा दे दिया।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म आंधी और तूफान से ये गीत आपने सुना। राह में खड़े होकर तेरा इंतजार किया है, राह में खड़े होकर तेरा इंतजार किया है, ओ मेरे सनम तुमसे उतना ही प्यार किया है। ना कोई शिकायत है ना कोई गिला तुमसे, बस हर लम्हा तेरे होने का एहसास किया है।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म संगम से ये गीत आपने अभी सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आंधी से।

तेरे बाद कुछ यूं मोहब्बत निभाई है मैंने, तेरे बाद कुछ यूं मोहब्बत निभाई है मैंने, तुम नहीं कोई नहीं कसम खाई है मैंने। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आपकी कसम से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म शिकारी से अभी आपने गीत सुना। तुझे इस कदर हम अपनी जान बना बैठे हैं, तुझे इस कदर हम अपनी जान बना बैठे हैं कि हर धड़कन में तेरा ही नाम बसा बैठे हैं। अब कोई आरजू इस दिल में बाकी नहीं, जब से तुझे प्यार करने की वजह पा बैठे हैं। मोहम्मद

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म पत्थर के सनम से ये गीत आपने अभी सुना। हजार रास्ते थे दुनिया में कहीं भी जाने के लिए, हजार रास्ते थे दुनिया में कहीं भी जाने के लिए, मगर उनकी एक नजर मिली और वही मेरा ठिकाना हो गया। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म रंगोली से ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म मस्ताना से ये गीत आप अभी सुन रहे हैं। इसी के साथ ही दोस्तों हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे की

0: श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पांच देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज लू की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी लू चलने की आशंका है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी गर्म और उमस भरे मौसम की भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, PM Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals and startups. PM Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing

सुबह के 4:11:10 हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में अगर मिलजुल के

ये सब कुछ किया जाए तो कितना आनंदमय जीवन हो जाता है, परंतु आज के समय में कोई साथ चलना ही नहीं चाहता और ना ही कुछ बांटना चाहता है। कोशिश कीजिए दोस्तों किसी के साथ चलने की और प्यार बांटने की, बिल्कुल इस गीत की तरह जो गाया है लता मंगेशकर ने फिल्म तकदीर से।

दोस्तों, हाथों की लकीरें और किस्मत यानी तकदीर का तो हमारी जिंदगी में बड़ा हाथ होता है, पर अगर हम अपने कर्म एक प्लानिंग के साथ करना शुरू करें तो देखना जिंदगी ही बदल जाएगी।

अनवर और सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म विधाता से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, तदबीर से हम बिगड़े हुए काम भी संवार सकते हैं और साथ में अगर अपने पर भरोसा हो तो फिर सोने पे सुहागा।

गीता दत्त की आवाज में फिल्मबाजी से ये गीत अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बाबू से।

0: दोस्तों, गम और खुशी, धूप और छांव, सच और झूठ के बीच में चलने का नाम ही जिंदगी है। आइए सुनते हैं चलती का नाम जिंदगी से ये गीत किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज में।
1: बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम बम

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म आराधना से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, यारी जो है हमें जान से प्यारी, जो हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना देती है और जिसके साथ हम अपना सुख दुख सब कुछ शेयर कर सकते हैं। आइए सुनते हैं जंजीर फिल्म से मन्ना डे की आवाज में ये गीत।

साजन बिन सुहागन फिल्म से येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी हर कदम पर हमारी परीक्षा लेती है और एक जंग की तरह हम जिंदगी भर समस्याओं को सुलझाने में ही लगे रहते हैं। पर समस्याओं को दोस्तों सुलझाना तो है ही, तो क्यों ना हंस के ही सुलझा लिया जाए।

शब्बीर कुमार की आवाज में फिल्म मेरी जंग से अभी आपने गीत सुना। आइए अगला गीत सुनते हैं मुनीम जी की फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

बिल्कुल दोस्तों, जीवन के सफर में मिलते हैं बिछड़ जाने को, और अब हमारा भी बिछड़ने का वक्त आ गया है। अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपने दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड्स, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज लू चलने की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals, and startups. PM Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments, and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen, and clean energy. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. A number of business agreements between Indian and Norwegian companies and entities were signed during the summit. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway

सुबह की 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना ससेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस शांत वातावरण में हमेशा मन यही करता है कि सबसे पहले प्रभु का सिमरन किया जाए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में ये भजन।

दोस्तों सुबह के समय जब हम वॉक के लिए जाते हैं पार्क में तो कोयल की मधुर ध्वनि कानों में जरूर सुनी होगी आपने। उसको सुनकर मन आनंदित हो उठता है और इसी से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मीठे शब्दों का दूसरे पर कितना असर पड़ जाता है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सरगम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में थोड़ी खुशी है और थोड़ा गम है, और उसी के बीच में हमें अपनी मस्ती में जीना है। आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक फिल्म से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना. आइए अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म राम और श्याम से.